0: इथे आके बच्चियां नू एक बेहतर जिंदगी देन दा सुपना ता पूरा हुंदा नजर आया है, पर डर भी लगदा है कि किते अपना पिछोकड़ अपनी मां बोली नू ना भूल जान।
1: ए डर तेरा ही नहीं, पंजाबो आ वसे हर मां प्यो दा है, इसलिए सिक्ख्या क्लासेस लेके आया है ऑनलाइन पंजाबी लर्निंग कोर्स, जिस विच तुहाडे बच्चे घर बैठे ही पंजाबी सीख सकदे हन। इस कोर्स विच बच्चे अपने परिवारिक रिश्ते ते साडे इतिहास बारे भी जानू हुंदे हन। इस दे नाल बेसिक मैथ्स, मोरल वैल्यूज ते मेंटल एक्सरसाइज भी करवाईयां जांदियां हन। Flexible timings, free demo class. Aaj hi call karo 204-463-0110.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: अक्सर ऐसा होता है कि अभी तो कामयाबी की सीढ़ी के पहले कदम पर ही होते हैं, अभी तो नाम मात्र ही कुछ अचीव किया होता है कि दैट टाइनी लिटिल बिट ऑफ सक्सेस शूट्स अप एंड गोज टू योर हेड, और आफ्टर इफेक्ट क्या होता है कि इस बीच आपकी नजर, आपका फोकस अपने टारगेट से हट जाता है। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। दुनिया जीतने का हौसला रखिए जनाब, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी जीत से सिकंदर नहीं बनते।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਲਿਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ खुलकर हंस पाना बड़ों और इंटेलिजेंट लोगों की रिस्पेक्ट गेन कर पाना और बच्चों का प्यार जीत पाना लोगों में अच्छाई ढूंढ पाना दुनिया को अच्छा बनाने में कोई योगदान दे पाना चाहे वो पेड़ लगाना हो चैरिटी करना हो ये जान पाना महसूस कर पाना कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर हो पाई क्योंकि आप उनके साथ थे मेरे लिए ये है कामयाबी फॉर मी दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म सक्सेस

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ऐसा होता है जिंदगी में कि हम औरों के करीब जाने की कोशिश में खुद से दूर हो जाते हैं, खुद को पहचान ही नहीं पाते। पता नहीं वजह टाइम की शॉर्टेज है या फिर कोई इंक्लिनेशन, कोई चाहत ही नहीं है खुद को जानने की, खुद से मिलने की। पर यकीन माने, जब आप अपने खुद के दोस्त बन जाएंगे तो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। क्योंकि अगर जिंदगी के सफर में अकेलेपन से डरते हो, दोस्तों की चाहत में दर दर भटकते हो, अगर करोगे अपने आप से ही दोस्ती, न होगा फिर कोई डर जब हम सफर खुद जैसा उमदा हो।

I'm not just going to be another face in the crowd. मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है. भीड़ में लाखों चेहरों में गुम एक आम सा चेहरा. और क्यों बनूं मैं एक आम सा चेहरा जबकि मैं और मेरा मन दोनों ये जानते हैं कि मैं खास हूँ, बेहद खास. पर सिर्फ ये पता होने से बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुझे यकीन करना होगा खुद पर, अपने टैलेंट पर, अपनी खूबियों पर. तब जन्म होगा मेरा दोबारा से. I know I'm not going to live forever, that's why I'll make this life the way I want it. God.

fight till you drop. Never stop. Don't give up till you reach the top because you're the best. और अगर वाकई में वो बेस्ट वाला एटीट्यूड है आप में तो फिर कोई भी छोटे मोटे सेटबैक्स आपको हिला नहीं पाएंगे क्योंकि जो बेस्ट होते हैं ना वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते क्योंकि जो बेस्ट होते हैं ना वो चाहे हजारों बार गिर जाएं वापस अपने पांव पर झट से खड़े हो जाते हैं क्योंकि गिर के हार के फिर से उठ खड़े होने का जज्बा इज नॉट अ मैटर ऑफ स्किल और टैलेंट इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन एंड गट्स एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज़ यू आर द बेस्ट।

जो प्रभु जस बिसरावै मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै कौ नानक है बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै बिलावल महला नावा जामै पर राम को नाही ते नर जन्मया कार्थ खोया यह रखो मन माही रहाओ तीर्थ करै व्रत फुन राखै न मनुआ बस जाको नेफल तरम ताहे तुम मानो साच कहत मैं या कहो जैसे पाहुन जल मैं राखियो भेद नाहे तह पानी तैसे ही तुम ताहे पिछानो भगतहीन जो प्राणी कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर जै भेद बतावै कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावै बिलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसै देखै सब सोई गुरमुख विर लाबू जै कोई विण पै पै भगत न होई सब रते सदा सुखोई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाओ ज्ञान ज्ञान कथा सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने ते रह न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नाम भूले थाओ न कोई मन माया बंदेओ सरजाल घट घट व्याप रहो बिख नाल जो अंजै सो दिसै काल कारज सिद्ध उरदै समाल सो ज्ञानी जिन शब्द लवलाई मनमुख होमै पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे वड़ियाई रैणा दाई निर्मल जोत ना बिना झूठे कुचल कशोत वेद पुकारै भगत स्रोत सुन सुन मानै वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ाम गुरमुख सात उत्तम कराम मनमुख जोनी दुख सहाम बंधन टूटे एक नाम सामंग मन्ने नाम सच्ची पद पूजा किस वेखा नाही को दूजा देख कहो पावै मन सोए नानक कह अवर नहीं कोए बिलावल महला तीजा मन का कया मनसा करै हो मन पौन पाप उचरै माया मदमाते तृप्त न आवै तृप्त मुक्त मन साचा पावै तन तन कलातो सब देख अब महाना बिन नावै किस संग न जाना रहाओ कीचै रस भोग खुशियां मन केरी तन लोका तन पसमै टेरी खाकू खाक रलै सब फैल बिन शब्द नहीं उतरै मैल गीत राग कंताल से कूरे त्रिगुण उपजे बिन से दूरे दूजी दुरमत दर्द ना जाए छूटै गुरमुख दारू गुण गाए तोती उजल तिलक गल वाला अंतर क्रोध पड़े नाटशाला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाही सुखथिया सूकर स्वान गर्दप मंजारा पशु मलेश नीचंडाला गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाई है बंधन बांध्या आई जाई है गुर सेवा ते लहै पदार्थ हृदय नाम सदा कृतार्थ साची दरगह पूछना होए माने हुक्म सीजै दर सोए सतगुर मिलै तां तिस को जाणै रहर जाई हुक्म पछाणै।

0: नायो आवै नाओ जाए, नानक साचे साच समाए। बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ अवमान, बिन नामै पाज रह निदान। सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ। गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो। साचै नाए वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै। दर घर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेवियै अंतर जामी। घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी। साचा नाम साचै शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभिमानै। गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई। औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई। सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई। नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार। गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन टॉप लिंक लोन एंड लीजिंग। तुहाडा ट्रक ट्रेलर दा लोन कितों नहीं हो रहा, जां तुसी यूज्ड ट्रक खरीदने हन ते सानू कॉल करो 204-480-9600, जां ऑनलाइन विजिट करो टॉपलिंकफाइनेंशियल.com।